0: Hyvänä.
1: Avaus. Telki. Musiikki. सोच की और आपकी आपकी आवाज़ आपकी आवाज़

0: म्यूजिक की सोच की और आपकी आपकी आवाज आपकी आवाज।
1: लाख पर्दों में रहूं भेद मेरे खोलती है, शायरी सच बोलती है। मैंने देखा है कि जब मेरी जबान डोलती है, शायरी सच बोलती है।

0: म्यूजिक की, सोच की और आपकी आपकी आवाज, आपकी आवाज।
1: हफीज होशियारपुरी।

0: की, सोच की और आपकी, आपकी आवाज, आपकी आवाज।
1: गजल पेशे खिदमत है हसरत मुहानी की।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: वो आपकी खिदमत में शायर लखनवी की गजल जो फरमाइश के तौर पे दी गई है, जो थके थके से तो हौसले

0: best. That's love for money.
1: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: साज दिल जब सदा नहीं देता, कोई नगमा मजा नहीं देता।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है। FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: इन द वे टू स्टार्ट दिस इज द मॉडल इन द हाउस कम ऑन ऑल द

0: फैंटास्टिक परफॉर्मेंस. हमारे दोस्त शंकर एहसान लॉय जिन्होंने ये कंपोज किया है, ये आपकी आवाज सुनते तो बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं. प्लीज इनके लिए वोट दीजिए बहुत सारे. थैंक यू.
1: मेरे लिए वोट करने के लिए टाइप कीजिए AMANAT अमानत और इसे भेज दीजिए 7575 पर. आप मुझे फोन भी कर सकते हैं 1904247575 13 पर. 13 मेरा कोड है. रिलायंस सब्सक्राइबर्स भी मुझे वोट कर सकते हैं 5123493 पर. थैंक यू.
2: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है.

0: फैंटास्टिक परफॉर्मेंस. हमारे दोस्त शंकर एहसान लॉय जिन्होंने ये कंपोज किया है, ये आपकी आवाज सुनते तो बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं. प्लीज इनके लिए वोट दीजिए बहुत सारे. थैंक यू.
1: मेरे लिए वोट करने के लिए टाइप कीजिए AMANAT अमानत और इसे भेज दीजिए 7575 पर. आप मुझे फोन भी कर सकते हैं 1904247575 13 पर. 13 मेरा कोड है. रिलायंस सब्सक्राइबर्स भी मुझे वोट कर सकते हैं 5123493 पर. थैंक यू.
2: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है.

रास्ते भी अजनबी हैं, चेहरे भी अजनबी हैं, बेचारगी है हर तरफ, बेगानगी है। कल भी एक आरजू थी और आज भी एक आरजू है, काश कोई हम सफर मिल जाए।

0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए। ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया।
1: सामेईन कराम, FM 92.9 पर हम रेडियो आपकी आवाज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। सामेईन कराम, FM 92.9 पर हम रेडियो आपकी आवाज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है। हमारे स्टूडियो का डायरेक्ट फोन नंबर है 39 29 71 04। एक दफा से फिर सुन लें, 39 29 71 04। नियत खाव नियत चू इन हल्फियास नल्फिया। हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज अल्लाह ताला के पाक कलाम से करते हैं।
2: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
3: शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है।
2: وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودِ।
3: آسمان کی قسم जिसमें बुर्ज हैं और उस दिन की जिसका वादा है और हाजिर होने वाले की और जो उसके पास हाजिर किया जाए उसकी

और तमाम अमाल में जो सबसे फजीलत बड़ी और अजीम हदीस आई है वो ये हदीस है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जुमे के बारे में। क्या फरमाया आपने? फरमाया कि जुमे के दिन ये फरमाया कि जिस आदमी ने जुमे के दिन गुसल किया और अब जब गुसल करने का आता है तो इसमें गोया कि गुसल भी किया, अच्छे कपड़े भी पहने हैं और गुसल किया और फिर वो जुमे के लिए फिर जल्दी भी आया, घर से जल्दी निकल के आया। और फिर आगे फरमाया कि जो है मशा वलम यरकब कि वो चल कर आया, सवारी सवारी पर नहीं आया। तो ये नहीं अगर आदमी जुम्मे के दिन पैदल चल के मस्जिद को आएगा तो उसको उस दिन ज्यादा अजर सवाब मिलेगा। और फिर आगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो आकर क्या किया उसने कि वो मस्जिद में आया और दना इमाम मिनल इमाम और इमाम के बिल्कुल करीब बैठ गया। ये नहीं कि आया जो मस्जिद में आ भी गया, पीछे जनाब मस्जिद दीवार के साथ टेक लगा के उधर बैठ के दूर बैठ के इधर बैठ के नहीं, आ करके आराम से आके इमाम के करीब बैठ गया, पहली सफ में बैठ गया। और फिर आगे फरमाया कि जिसने वहां पर बैठ के क्या किया, फरमाया कि वस्तमा और इमाम का खुतबा सुना। तो ये खुतबा जो है या सुनने से मुराद के है कि उसको गौर से सुना। और याद रखें कि अरबी में एक लफ्ज होता है समया, सुनने का। तो आम जो सुनते सुनते जो हम लोग सुनते हैं ना कि तो जिसका पता ही नहीं थोड़ी देर पता क्या कहा, तो इसको समय कहते हैं। लेकिन इस्तमा का माने होता है गौर से सुनना, गौर से ऐसी तवज्जो से सुनना कि आपका दिल उसके लिए बेदार हो जाए। और इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में जो वही जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ भेजे फिर फस्तमे अलिमा यूहा, तो फरमाया जो अल्लाह की तरफ से आपको आती है तो कुछ गौर से सुने आप, तो गौर से दिल खोल करके सुने, वो बात फिर असर करती है, बात महफूज भी होती है, अमल की तौफीक होती है। तो जुमे के खुतबे के लिए भी जरूरी है कि फस्तमा के उसने उस जुमे का खुतबा को गौर से सुना। अगर ये याद रखें, देखें हर मस्जिद में जुमे का खुतबा होता है और अगर कितने महीने में 4 जुमे पढ़ते हैं और जो है हर जितने आदमी की 50 साल जिंदगी है कितने जुमे पढ़ते हैं क्या करें, लेकिन उससे कोई फायदा भी हुआ आपको? और हर इमाम, कोई इमाम जो है चाहे वो अली हदीस हो चाहे बरेलवी हो देवबंदी हो, कोई इमाम ये नहीं कहता भाई नमाज नहीं पढ़ना, कोई इमाम नहीं कहता है कि जी जकात नहीं देना, कोई इमाम नहीं कहता है कि भाई हराम खाना, कोई इमाम नहीं कहता है कि आप झूठ बोलना। हर एक इमाम ये कहता है पेरिस के हलाल खाओ, औलाद की अच्छी तरबियत करो, आप झूठ ना बोलो। तो अगर एक आदमी जो है ये बातें सुनता रहता तो कितने लोगों की इसलाह हो जाती है। तो आज लोगों की इसलाह क्यों नहीं हो रही है? इसलाह इसी वजह से नहीं कि बात सुनते ही नहीं है, गौर से बात सुनते ही नहीं है। और इसकी वजह से ये खुतबे हो रहे हैं लेकिन इनका कोई आज असर नहीं होता है। और जो है इमाम की जो है अगर बात कभी गौर से सुन ले कि हाँ इमाम ने ये कहा है आज कि भाई रिस्क हलाल खाना, फिर कोशिश करते कह रहा इस इमाम को यहाँ से बदली कर दो या इमाम किसी नमाज पढ़ने छोड़ देते कि बात समझ आ जाए, तो फिर उल्टा करे हो इस इमाम ने जो है ये कहता है कि तुम हराम के काम ना करो और ये कहते हैं इसके हलाल खाओ, कहते यार ये तो शर्मिंदगी होती है और दूसरी जगह चले जाते हैं। और मुझे तो ऐसे तजर्बा तो लोग कहते हैं जी आप लोग कहते हैं आप बड़ी सख्त बातें करते हैं, भाई हम क्या सख्त बातें करें, सख्त तो उस वक्त तुम्हें पता चलेगा जब इसके जो अमाल तुम्हारे हैं ये सामने जब आएंगे करतूत सामने आएंगे उस वक्त तुम्हें पता चलेगा क्या सख्त था क्या नरम था ये। तो बहरहाल तो जुमे के खुतबे के लिए सुनो गौर से और फिर फरमाया वला यलगू और फरमाया उसने कोई लव कौम लव किया था कि जब खुतबा हो रहा हो तो उस वक्त आदमी कोई मतलब कुरान की तलावत शुरू कर दे, तो ये कुरान की तलावत करना भी अलग हो जाएगा, आदमी उठ के नमाज पढ़ना शुरू कर दे। तो खुतबा जब हो रहा हो तो उस वक्त नमाज पढ़ने की इजाजत भी नहीं, जिक्र करने की इजाजत नहीं, सिर्फ आपने गौर से इमाम का खुतबा सुनना। यहाँ तक फरमाया कि आप जब खुतबे बैठे हैं आप दूसरे आदमी किसी को दे, दूसरा आदमी मतलब टेलीफोन बातें कर रहा है, अब आप उसको ये कहते हैं भाई ऐसा नहीं करो टेलीफोन बंद करो, तो ये भी कहता गुनाह की बात है कि आपने कैसे कह दिया ये, क्योंकि आदमी खुतबे में जब होता है तो वो ऐसे ही है जैसे नमाज में है। अब एक आदमी नमाज पढ़ रहा है साथ दूसरा आदमी जब बातें कर रहा है तो नमाज की हालत में आदमी कह दे भाई बातें ना करो तो आदमी नमाज तो खत्म हो जाएगी, इस तरह से खुतबा भी ऐसे है। इसी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जिसने ये लव काम किया फला जुमा था उसका जुमा ही नहीं होगा जुमे का वो। तो इसलिए इस बात का नमाजी ख्याल रखें जुमे के अंदर आए तो टेलीफोन अपना बंद करके आए और जब खुतबा और इधर उधर

0: हमारे यहाँ के इदारों का हाल है, तो यहाँ भी इंसाफ उसी तरह एड़ियां घसीटते हुए और चौथी टांग का मोहताज है। वहां पे हुआ और अच्छा एहतजाज था और लोगों ने अच्छा खुल डुल के हिस्सा लिया, और अच्छा था कि जो कि शिक खत्म की गई 700 और कुछ नंबर की, जो हिंदुस्तान ने उसे अपना हिस्सा बनाने के लिए जम्मू कश्मीर में उसे अपना सूबा करार देने के लिए उसका उसके 7 साल मुकम्मल हो रहे थे, तो उस सिलसिले में ये एक एहतजाजी मुजाहरा था। लोगों ने अच्छी मोहब्बत से उसमें हिस्सा लिया। बिल्कुल यहाँ से जाहिद हाशमी साहब का ये काफिला गया था, एक बस थी पूरी फ्रांस से, तकरीबन मेरा ख्याल है 70-75 के करीब लोग होंगे उसमें, भरी हुई बस थी, फैमिलीज थी उसमें, यानी कि खवातीन भी थी उनके साथ, उनके हस्बैंड भी थे, बच्चे बड़े बच्चे भी थे, जवान बच्चे जिनके थे वो भी साथ में थे, तो एक अच्छा मुजाहिरा था माशाल्लाह। और बाकी मुल्कों से भी मेरा ख्याल दूसरे नंबर पे इटली का शायद वफ्द था, जिनके मेरा ख्याल 63, हाँ 63 के करीब अफराद उनके भी थे, एक खातून से बात यूं बता रही थी, तो अच्छा था मुजाहरा, तो अच्छा था ये कि अल्लाह करे कि ये काविश कबूल हो, क्योंकि मैं वहां गई थी, मैं अपना दिन पूरा एडजस्ट करके, मेरा जुमे का अपना बराह रास्त मुशायरा होता है, लेकिन यहाँ पे इनकी तरफ से, इन लोगों की तरफ से जब दावत थी तो ये था कि हमने कहा चलें ठीक है, कश्मीर के लिए आवाज में हम अपनी भी आवाज एक शामिल करते
1: तो
0: हैं,
1: खुद कश्मीरी
0: तो
1: सारे गए या के बाकी लोग जो हैं वो यकजहती के लिए गए?
0: कश्मीरियों का मसला ये है कि कश्मीरी खुद नहीं निकलते, उनको सब कुछ तैयार चाहिए। मुझे मूसा अलैहिस्सलाम का वो वाकया याद आता है कि जब आपने कहा कि बनी इसराइल चलो हम फिरौन के साथ हमने जंग करनी है और मुकाबले का वक्त आ गया, तो उन्होंने कहा था जो मूसा तुम और तुम्हारा खुदा जाकर जंग करो, जब जीत जाओगे तो हमें बताना हम आ जाएंगे। तो फिर अल्लाह ताला ने वैसे ही तो उस कौम पर लानत नहीं भेज दी थी ना कि जिनको हर चीज पेट में प्लेट में चाहिए, मनो सलमा सलवा प्लेट में चाहिए, कपड़े बदन पे बड़े होते चाहिए, चश्मा अलग अलग चाहिए, और फिर उनको हीरो भी बनना है। जब तक जो कौम खुद शामिल नहीं होती, आप अपनी छुट्टी को घर में बारबेक्यू पार्टियों के लिए मुख्तस करते हैं, आपके घरों की औरतें शामिल नहीं होती हैं, अब जिस बस में जितने लोग थे, जितने खड़पैंच थे, उनमें से किसी की बीवी शामिल नहीं थी, आप इस बात से अंदाजा लगाएं, और बाकी औरतें अगर शामिल हैं तो ये नहीं हो रहा था ना। अभी 2016 में हम लोग गए थे, मैं अपने 3 बच्चे लेके गई थी, छोटे थे सारे, और हमने वहां पे ब्रसल्स में मुजाहरा किया था पार्लियामेंट के सामने, लेकिन यहाँ आके पता चलता है कि उस वक्त भी हमने ये एहतजाज किया था कि आप लोगों के घर की खवातीन किधर है, आप लोगों की किसी की बेटी नहीं है, किसी की माँ नहीं, किसी की बीवी नहीं, कोई नहीं है, आप लोग लावारिस है सारे क्या? तो उस वक्त भी हमने कहा था, इस वक्त भी 10 साल बाद आज गए तो 10 साल बाद भी वही कहते हैं ना कि आवे का आवा वैसे ही वैसा उल्टा पुल्टा पड़ा हुआ है, कुछ भी नहीं बदला, तो फिर मजीद 10 साल और इंतजार करें, फिर देखें फिर 10 साल में क्या आप क्या करेंगे जो अब तक आपने नहीं किया। तो जब तक आपकी नीयतें अच्छी नहीं होंगी, आप खुद पुरखलूस नहीं होंगे कि छुट्टी को घर में बैठकर कश्मीरी बारबेक्यू पार्टियों का, और चलो भी तुम्हारे घर तुसाने कार लाद रखने हैं, तुसाने कार फलाना रखने हैं, तुसाने कार हाइटी रखने हैं, जब वो इस जंगल से नहीं निकलेंगे, वो हांडियां रोटियां तो बाहर निकल आओ, इतना खा खा के 50-50 साल से आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं यार, कितनी हवस है खाने की जो खत्म नहीं होती है, या जो चरहों से दिल नहीं भरता, जो बिरयानियों से दिल नहीं भरता, जो निकलो यार कुछ प्रैक्टिकल मैदान में आओ। उनकी बुनियादी जो है ना कश्मीरी बहन भाइयों के साथ गिला ये बनता है, उनकी जिंदगी का मेन मकसद है पैसा पैसा पैसा पैसा, बस जितना मर्जी आए, चिट्टा आए काला आए पैसा आना चाहिए। भैया पैसा आपके नसीब में जितना है अल्लाह उसके लिए रास्ते बनाता है, वहां आ तक आपको खुद पहुंचाएगा, आप पैसा जरूर कमाएं, हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन जिंदगी में कुछ और मकासद भी होते हैं। मरने के बाद मैंने फरिश्ते को जवाब ये नहीं देना कि मैं इतनी कोठियां छोड़ आया, मैं इतने करोड़ ना जेवर छोड़ आया, मैं इतने करोड़ ने प्लाट छोड़ आया, मैं फलाना सियासी टिकट लेके भांजा भतीजा डॉक्टर बना के कुर्सी से बिठाया, नहीं, जिंदगी के मकासद में आपने इंसानियत की भलाई के लिए क्या काम किया है, ये सवाल का जवाब जिंदगी किन मकासद में गुजारे, किन कामों में, मैं भी इन्हीं कामों में फजूल कामों में पड़ी हूँ ना, लिखना लिखाना छोड़ो यार, जाके इसी में मैं एक जॉब करके, अगर मैं 2000 यूरो तक 1500 यूरो तक भी कमाती तो मैंने 28 साल इस चीज में लगा दिए, तो क्या आज मैं कितने घरों की जाती तौर पर नकद के ऊपर मालिक होती, मैं किराए खा रही होती, मैं ऐश करती, लेकिन मेरे पास क्या होता ये सोचने के लिए कि अगर अभी मेरी जान निकल जाती है तो मैं अल्लाह को क्या कहूंगी, मैं दुनिया में क्या करके आ रही हूँ।
1: نہیں آپ کے لیے تو بڑا آسان تھا کہ آپ شاعرہ ہیں، رائٹر بھی ہیں، آپ کہتی جی میں فلاں

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। समनाज़ीन, ये मिला जुला इन्फॉर्मेशन का प्रोग्राम है, जिस तरह हमने बताया था कि हमारा स्पेशल प्रोग्राम होगा और ये इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम है। इसमें वो इन्फॉर्मेशन होती है जो हर मरीज चाहता है। मरीज़ हर तो मरीज़ नहीं होता, लेकिन जानकारी जो है वो चाहता है। इस वक्त हमारे साथ जो शख्सियत है, इससे मीडिया से भी इनका ताल्लुक है, तालीम के शोबे से भी इनका ताल्लुक है, और ये स्टेट सेक्रेटरी अक्सर जो हैं वो नज़र आते हैं, और इनको जो है स्टेट सेक्रेटरी के नाम पर एक लोगो इनका बन गया है कि ये अच्छे स्टेट सेक्रेटरी होते हैं। मेरी मुराद है रिजवान भाई। रिजवान भाई, एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं।
2: जी बहुत बहुत शुक्रिया, और बड़े कीमती अल्फाज बोले आपने, मैं इस काबिल तो नहीं था, लेकिन
1: नहीं रिजवान भाई, आप डिजर्व करते हैं, आप एक पढ़े लिखे हैं, मेरे लिए तो जवान नौजवान ही हैं, गो कि आप खुद बच्चों वाले हैं, लेकिन मेरे लिए नौजवान ही हैं। आप जो है ना काम करते हैं और दर्द दिल भी रखते हैं, सोशल काम करते रहते हैं, लोगों की हाथ बंद करके मुट्ठी जो है इमदाद भी करते रहते हैं, लेकिन एक मर्ज, एक ऐसा मर्ज है जो कि मूजी मर्ज है। मूजी मर्ज के लिए जो है बहुत कम लोग जो है बहुत कम अस्पताल बनाए जाते हैं
2: जी।
1: तो कैंसर भी कैसा मूजी मर्ज है जो ला इलाज है। अब तो इलाज इसका होता रहता है, लेकिन एंड आफ्टर एंड पे जाके जो है ना ये इलाज जो है फिर मुश्किल पड़ जाता है। तो रिजवान भाई, ये फंड रेजिंग के प्रोग्राम चलते रहते हैं। शौकत खाना में एक बड़ा नाम है, छोटा नाम नहीं, इसको सियासत की नज़र से नहीं देखना चाहिए, इसको शौकत खानम की नज़र से देखना चाहिए, कैंसर अस्पताल की नज़र से देखना चाहिए। शौकत खानम को भी छोड़ दे, लेकिन इसमें जो मरीजों का इलाज होता है उस चीज़ को देखना चाहिए। तो यहाँ हमेशा हर साल फंड रेजिंग होती है, और अब हमेशा आप फंड रेजिंग में जो है वो स्टेट सेक्रेटरी ही नज़र आते हैं। आप बताना पसंद करेंगे जो फंड रेजिंग का प्रोग्राम हुआ है कहाँ आजकल में?
2: हाँ जी, आजकल में ये सुबह में हुआ है, ये 17th को सितंबर को ये प्रोग्राम हुआ है, और इसमें जो है वो पाकिस्तान से जो गेस्ट आई हुई थी हमारी, जो इसके रिप्रेजेंट कर रही थी शौकत खानम को, उसमें एक डॉक्टर साहब आए हुए थे, मोहम्मद आलम साहब, और एक जो टीवी आर्टिस्ट हैं हरीम फारूक, वो आई हुई थी, जिन्होंने मिलके हमारे साथ ये प्रोग्राम किया है। और ये प्रोग्राम भी माशाल्लाह बाकी प्रोग्राम्स की तरह अच्छा गया है, लोगों ने बहुत इसको सराहा भी है, और लोगों ने इसमें जो है हमारे साथ फंड रेजिंग में हमारे साथ तावन भी किया है।
1: रिजवान भाई, हमेशा अच्छा होता है, इस दफा अच्छे से क्या मुराद लेते हैं आप?
2: इस दफा अच्छे से, जैसा मैंने कहा, जिस तरह हर दफा होता है, इस दफा भी अच्छे से मुराद मैंने यही ली है कि लोग बड़े, जो हमारे ऑडियंस हैं माशाल्लाह, इन लोगों में तो हम इतने सालों से रह रहे हैं, इन्होंने बहुत ही सुकून से वो जो डॉक्टर साहब ने प्रेजेंटेशन दी थी वो सुनी, और पाकिस्तान में जो इस वक्त कैंसर के पेशेंट्स की जो तादाद, बढ़ती हुई तादाद है, और उसके बारे में सुना, साथ ये भी उन्होंने बताया डॉक्टर साहब ने कि इसकी वजह से हमें कितने जो है वो अस्पताल के अंदर जो है वो अरेंजमेंट करने पड़ते हैं, और हमारे जो पूरी दुनिया से जो शौकत खानम को फंडिंग जा रही है, और इंटरनली पाकिस्तान से जो लोग फंड कर रहे हैं उसकी कितनी अहमियत है। तो ये कुछ फिगर्स उन्होंने दी थी, जिसमें मतलब सिर्फ एक जो फिगर मैं ये बताऊंगा कि 4,300 करोड़ रुपया साल का बजट है शौकत खानम का।
1: एक बार दोबारा रिपीट करें,
2: 4,300 करोड़, यानी 43 बिलियन रुपीस
1: साल का बजट है। अच्छा खासा बजट है, बड़ा मजबूत बजट है,
2: और ये इतना महंगा इलाज है कैंसर का, इतना महंगा इलाज है कि मतलब आम बंदा इसको अफोर्ड भी नहीं कर सकता है। तो ये मतलब हमारे लिए सबकी जिम्मेदारी है कि हम इसके साथ वो चलें। अगर आप डेनमार्क की बात करते हैं, तो मैं अगर आपको डेनमार्क के बारे में कुछ बताऊं, तो वो ये है कि हमारे यहाँ पे जो इसको लीड कर रहे हैं मिशन को, वो अयूब, मोहम्मद अयूब साहब हैं, ये प्रिंटो प्रेस वाले, और इनकी सरबराही में हमारी पूरी टीम काम करती है, और मुझे इतनी खुशी है कि इस तरह के लोग राजा साहब यहाँ पे मौजूद हैं जो कि इनिशिएटिव लेते हैं, हालांकि खुद भी ये सब हम लोग मसरूफ हैं, काम करते हैं, लेकिन हम एक छतरी के नीचे सारे जो है हम काम करते हैं, क्योंकि हमें ये पता है कि हमने यहाँ से फंड रेजिंग करके लाजमी तौर पे पाकिस्तान भेजनी है, अदरवाइज यहाँ सारे मुल्कों की तरह।
1: रिजवान भाई, बड़ा अच्छा काज है, लेकिन ये छतरी जो है ये पीटीआई की छतरी क्यों होती है? ये तो सबके लिए छतरी होनी चाहिए।
2: ये बिल्कुल ही इंतहाई गलत परसेप्शन क्रिएट की हुई है लोगों ने शौकत खानम का। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इट हैज नो कनेक्शन विद पीटीआई। नो, ये जरूर है कि पीटीआई के जो लोग जो पीटीआई में काम करते हैं या उनके चाहने वाले हैं जो उनके कारकुन हैं वो शौकत खानम के टीम में भी काम करते हैं, लेकिन अगर आप एक दो दफा तशरीफ लाएं तो आप देखें कि कितने ज्यादा लोग हैं जो कि दूसरी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं वो भी हमारे साथ काम कर रहे हैं।
1: आप बता दें जो आपकी ये फंड रेजिंग टीम है जो इसमें शौकत खानम की जो ऑफिशियल टीम यहाँ की बनी हुई है चौधरी अयूब साहब की छतरी के नीचे, जरा इनके नाम तो सुनाए हमें।
2: इनके मेन जो नाम है वो चौधरी अयूब साहब से तो मैं स्टार्ट करता हूँ, उसके बाद जो है वो आता है आमिर दुरानी साहब का नाम आता है, मेरे दोस्त हैं, भाई हैं, इमरान महबूब हैं, मोहसिन मलिक हैं, जुल्फकार अली सिंधु हैं, जवेद इकबाल साहब हैं, और इसके अलावा मजर मलिक साहब हैं जो कि बड़े प्रोमिनेंट फिगर हैं हमारे पीटीआई के काम करने वालों में से। फिर दो खवातीन हैं और इस तरह तलब साहब हैं, इस तरह फैसल साहब हैं, और भी काफी ऐसे लोग हैं जो नया इंक्लूजन हुआ है जिनके
1: फैसल
2: बारे में
1: अपना क्या नाम है रिजवान भाई। अगर इन चीजों सबको देखा जाए तो ये सारे पीटीआई के सरकर्दा लोग हैं। अयूब साहब तीन बार सदर बने या चार बार सदर बने, आमिर साहब जो है वो सेक्रेटरी जनरल हैं पीटीआई के बने या भी हैं, इसी तरह इमरान महबूब साहब हैं ये सबका सदर हैं, जो भी आप नाम लेंगे तो ये सारे पीटीआई के लोग हैं।
2: नंबर एक तो ये जी के दो तीन ऐसे लोग हैं जिनके मैं नाम भी नहीं ले सकता, मुझे याद नाम नहीं याद नहीं, जो नया इंक्लूजन हुआ है वो बिल्कुल वो पीटीआई के नहीं, उनका पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं है, मैं आपको नाम भी उनके भेज दूंगा। नंबर एक। नंबर दो, बात ये है कि पीटीआई के जो लोग हैं वो शौकत खानम में, अगर आप प्रोग्राम में तशरीफ लाते तो आप देखते प्रोग्राम में, पूरे प्रोग्राम में पीटीआई का पी का भी जिक्र नहीं हुआ ना किसी का। हाँ ये जरूर हुआ है कि जिन्होंने जिन्होंने ये शौकत खानम को बनाया है वो कितना अजीम आदमी है। देखिए जब शौकत खानम में लोग इलाज कर रहे हैं, ये बिल्कुल आप वही बात कर रहे हैं, मैं आपको थोड़ी सी तफसील बताऊं, जब शौकत खानम में मैं फर्ज करें मैं मुस्लिम लीग का जो हूं मैं कारकुन हूं या मुस्लिम लीग को पसंद करता हूं, तो मुझे अगर खुदा ना खासा या मेरी फैमिली में से अगर किसी को ऐसा मर्ज हो जाता है तो जब मैं शौकत खानम जाऊंगा तो वो मेरे से ये नहीं पूछेंगे कि तुम पीटीआई के हो कि मुस्लिम लीग के हो कि काफ लीग के हो कि डी लीग के हो कि जी लीग के हो, उन्होंने मुझे वेलकम करना है और उन्होंने मेरा जान बचाने की पूरी पूरी कोशिश करनी है। तो बायसनेस का अगर आप जिक्र कर रहे हैं राजा साहब, तो मुझे आप ये बताइए क्या आपके नजदीक ऐसी कोई, आप भी माशाल्लाह साफी हैं, कोई ऐसी मिसाल है कि कोई शौकत खानम में इलाज कराने गया और उसको सिर्फ इस वजह से निकाल दिया गया कि वो किसी दूसरी सियासी जमात से ताल्लुक रखता था? योर आंसर विल बी बिग नो। मुझे आप बताइए
1: कैंसर का जो मरीज है ना उसके लिए कोई पार्टी नहीं है, कोई कुछ नहीं है जो कैंसर के लिए। देखिए एक होता है बेनिफिशरी जिसके नाम से बनता है, जिस तरह नवाज शरीफ साहब ने अपना कोई अभी अस्पताल बनाया, पैसे गवर्नमेंट के या उनके अपने जेब से लगे, इसी तरह कुछ चंदे से अस्पताल बना उनकी जेब से लगे या दूसरे लोगों ने पैसे दिए। कोई अस्पताल जो हुकूमत की तरफ से जो है ना वो नहीं बना, तो हुकूमत वजारत उज़्मा में रहे, इमरान खान साहब भी रहे, नवाज शरीफ साहब भी वज़ीर आज़म रहे, इसी तरह पीपल्स पार्टी के पास भी वजारत उज़्मा रही और दूसरी जमातों के पास भी पावरें रहीं, ताकतें रहीं, तो उन्होंने कुछ सरकारी सतह पर कोई जो है ना इस तरह का अस्पताल नहीं बनाया। अगर किसी शख्स ने अपनी माँ के इलाज से मुतासर होकर चंदा इकट्ठा किया तो अस्पताल बनाया, बहुत अच्छी बात है, सब ने सराहा इसको, कहीं भी इसकी कोई मुखालफत करता है तो मैंने समझा कि कैंसर अस्पताल की मुखालफत करनी चाहिए। अगर आपके पास चंदा देने के लिए एक रुपया है तो आप एक रुपया दें, दो रुपये हैं दो रुपये दें, फालतू जितने हैं आप ज़रूर दें, ये इंसानियत का इलाज है, लेकिन सरकारी सतह पर यह इलाज नहीं होता। इसके सारे बेनिफिशरी जो भी ये काम करते हैं बेनिफिशरी वही लोग होते हैं।
2: अल्लाह ताला ऐसे बेटों को हमारी कौम में बार बार पैदा करे। और मैं सिर्फ आपसे ये बात पूछना चाहता हूँ कि ये शौकत खानम जो आपके पास बहुत नॉलेज, ये कितने सालों में बना था, आपके पास फिगर्स होंगी कितने साल लगे थे?
1: बड़ा टाइम लगा जी, यहाँ तो बच्चों ने खड़े होकर, स्कूल के बच्चों ने खड़े होकर चंदा दिया, लाइन में खड़े होकर चंदा दिया।
2: तो आप मुझे ये बताएं कि अब मैं सियासत की तरफ ऐसे बात लेके जाना नहीं चाहता, लेकिन अगर सिर्फ 3.5 साल के लिए इमरान खान साहब हुकूमत में आते हैं, वो 3.5 साल में ऐसा कौन सा नया अस्पताल हुकूमत की तरफ से खड़ा कर सकते हैं जबकि सारे उनके अपोजिशन तो हर जगह ही खैर होती है। इसीलिए ये प्रोजेक्ट्स बहुत लंबे हैं, ये टाइम टेकिंग है, इसी वजह से जो आपने कहा वो बिल्कुल ठीक है। जो भी हुकूमत में आता है, जिन लोगों के पास लंबी भी हुकूमत रही है, जिनके पास इतने सालों से रही है, वो क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि ये क्विक वोटिंग नहीं है सर, वो बनाते हैं इधर उधर के ब्रिज वगैरह ये बना दिए, तो उसमें उनको जो है वो एक्स्ट्रा जो एक वो मिल जाता है कि उसका रिजल्ट जो है वो अच्छा आता है, फायदामंद भी है। लेकिन कुछ प्रोजेक्ट्स इनसे भी ज्यादा फायदामंद हो सकते थे, जिस तरह हेल्थ है, जिस तरह आप कह रहे हैं एजुकेशन है, तो मैं अभी भी ये कहूंगा। लेकिन हम बहरहाल मेरा चूंकि आजकल पाकिस्तान की सियासत से इतना ताल्लुक नहीं है।
1: नहीं, आप सियासत नहीं करते, आप देखे ना हाल ही में जो है वो नून लीग की वजीर आला है पंजाब की, तो उन्होंने 3 करोड़ या 3.5 करोड़ का जहाज जो है वो किराए पे लिया, किराया उसका दिया, तो उन्होंने उसकी पेमेंट भी कर दी। अगर लीडरान अगर इतने अमीर हो जाते हैं तो फिर ये फंड रेजिंग वगैरह छोड़ देनी चाहिए।
2: हाँ जी, फंड रेजिंग तो हम इसलिए कर रहे हैं ना कि हमें पता है कि मतलब मेरे पास कुछ फैक्ट, मेरे कुछ दोस्त वहां पे डॉक्टर्स हैं पाकिस्तान में, जिनसे जिसकी वजह से मुझे मोटिवेशन मिला कि मुझे शौकत खानम के लिए मुझे नहीं बल्कि हम सबको काम करना चाहिए। दुनिया में जो पाकिस्तानी जहां जहां है वहां पे उनको काम करना चाहिए। उनकी वजह से मुझे कुछ थोड़े बहुत ऐसी इतला मिली जिसकी वजह से पता लगा कि शौकत खानम हॉस्पिटल डेस्परेटली नीड्स आवर सपोर्ट। और इसमें हमारे ही अपने भाई बंद, अल्लाह ताला सबको सेहत याद रखे, तंदुरुस्त रखे, लेकिन जब जाते हैं तो उनका किसी पार्टी से कुछ नहीं पूछा जाता किससे ताल्लुक है, उसको दाखिल कर लिया जाता है और उसका इलाज करने की पूरी। इसमें एक केस मेरी फैमिली में है और भी बहुत सी फैमिलियां हैं पाकिस्तान में और यहाँ पे डेनमार्क में जिनके पास ऐसे टेस्टिमोनियल्स मौजूद हैं। तो मैं जो काम कर रहा हूँ मैं ना किसी को खुश करने के लिए कर रहा हूँ, मैं सिर्फ खुदा ताला की रजा के लिए कर रहा हूँ और उन लोगों के लिए कर रहा हूँ जिनका और कोई भी नहीं है अगर पैसों के हिसाब से देखा जाए, अगर हम उनकी हेल्प ना करें। अब अगर आप मतलब मेरा ये जो डिटेल है मैंने बताई है कि मैं इसके लिए क्यों काम कर रहा हूँ, शौकत खानम के लिए मैं क्यों काम कर रहा हूँ।
1: चले आप बताएं आप क्यों काम कर रहे हैं।
2: जी मैंने यही तो बताया कि इस वक्त हमारी सपोर्ट की जरूरत है। अगर मेरे किसी अच्छे
1: आप दर्द दिल रखते हैं, ये अस्पताल बनने चाहिए और हर शहर में बनने चाहिए, अगर अल्लाह ताला तौफीक दे, गवर्नमेंट को दे तौफीक दे, पढ़े लिखे लोगों को, अमीर लोगों को तौफीक दे जो अरबों की गाड़ियां रख सकते हैं, खरबों के घर बना सकते हैं, बैंक बैलेंस बना सकते हैं, अगर वो जगह जगह हर शहर में हर जिला में जो है ये बनने चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं आपके इससे आपकी सपोर्ट करता हूँ, फुली सपोर्ट करता हूँ। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये हाल ही में जो प्रोग्राम हुआ है, जब भी प्रोग्राम फंड रेजिंग का होता है तो उसमें पैसे बताए नहीं जाते, कितने पैसे इकट्ठे हुए हैं और वो कहाँ गए हैं, किसको भेजे हैं। हर दफ़ा इतना, आजकल तो इतना मॉडर्न ज़माना है, जिस तरह ये DMC वाले करते हैं, आप 10 करोड़ देते हैं, सामने आपको स्क्रीन पर लिखा आ जाता है कि आपने 10 करोड़ दिए, कैश आपने दिया है वो सामने लिखा आ जाता है, तो एंड दे प्रोग्राम जो है हर चीज़ सामने आ जाती है। लेकिन जब यहाँ शौकत खानम के लिए होता है तो इसके लिए जो है वो बैलेंस नहीं बताया जाता।
2: बिल्कुल, ये एक आपका सवाल बड़ा वैलिड है और ये आप अगर आप यूब साहब से पूछें तो वो आपको ज्यादा तफसील से बताएंगे। मेरे पास जो नॉलेज है वो ये है कि ये क्योंकि हर साल शौकत खानम का प्रोग्राम होता है तो अभी मेरे ख्याल 2 इवेंट हुए हैं। मैं एक बार खुद, मेरे पास भी कुछ पैसे थे जो लोग दे जाते हैं और वो नाम भी नहीं बताते अपना, वो मैं यूब भाई को गया देने, उनके दफ्तर गया, तो उस वक्त वो पैसे भेज रहे थे तो मेरे सामने जो एक बार तो मेरे सामने ही मुकम्मल जो अमाउंट है वो भेजी गई है। तो मैं इसका तो मैं मतलब खुद चश्मदीद गवाह हूँ कि खुदा माफ करे हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जो कि इस कोई गलत बात सोचे भी। और मैं अगर आपके सामने, चूंकि आपने जो मेरा तारुफ कराया मैं उसकी रोशनी में कह रहा हूँ, अगर आप मुझे इस गहराई तक जानते हैं तो फिर आप ये भी जानते हैं कि मैं किसी बेईमान आदमी के साथ काम नहीं कर सकता। हमें इतना एतमाद है अपनी पूरी टीम पे और अयूब भाई पे, तो हम लोग फ्रेंटिकली काम भी इसलिए उनके साथ करते हैं कि वो बड़ी नीयत से बड़े उसे, और मेरा ख्याल है अगर कोई अच्छा काम करे तो उसको सराहना भी चाहिए। और मैं तो चूंकि मैं बहुत आउटस्पोकन हूँ इसलिए मैं अभी
1: अयूब साहब देने वालों में लेने वालों में नहीं।
2: हाँ जी बिल्कुल, तो इसीलिए मुझे मैं उनके साथ, मैं तो एक किस्म का उनको बड़ा भाई भी समझता हूँ, कभी कभार मुझे उनसे डांट भी पड़ जाती है, लेकिन ये कि मैं यही समझता हूँ कि जिस जो है मेरे सीनियर हैं, जिस इसमें माशाल्लाह आप भी शामिल हैं, अगर वो किसी बात पे मुझे बताते हैं या
1: चले रिजवान भाई आते हैं। जो प्रोग्राम हुआ 17 तारीख को प्रोग्राम हुआ तो तादाद कितनी थी?
2: तकरीबन जी थे मतलब 250 के करीब लोग तो थे।
1: तो फी टिकट कितना था पर पर्सन?
2: बड़ा ही नॉमिनल था, देखें जिसमें 200 करोड़ का टिकट था, जिसमें हमने खाना भी दिया है और कुछ अखराजात जो है वो भी अदा किए हैं जो सेपरेट थे, उनकी अभी फिगर मेरे पास नहीं आई, लेकिन बस थोड़ा सा इसमें यही रहा है कि फायदा हुआ है लेकिन ये कि काफी इकोनॉमिकली हमें चलना पड़ता है।
1: मोबाइल पेमेंट कितना हुआ है?
2: ये जी अभी फिगर मेरे पास अभी नहीं आए, میرا ابھی ان سے رابطہ نہیں ہوا ہے اس
1: تو
2: معاملے
1: کیش
2: میں.
1: پیمنٹ جو آپ کے ہوتے ہوئے دی گئی ہو؟
2: ہاں جی میرے ہوتے ہوئے دی گئی تھی, ہم ایک باکس میں کلیکٹ کر رہے تھے. تو اب یہ ہے کہ مجھے اگر میں باکس میں دیکھ کے آپ کو بتا دوں تو بڑا غلط ہوگا, اس میں گننے پڑتے ہیں پیسے. لیکن یہ جو سب کچھ ہے
1: ہر چیز کا گیس کیا جاتا ہے. اگر موٹے موٹی بات کی جائے 300 گیس تھے, لوگوں نے جو ہے وہ ٹیلی فون موبائل پہ بھی کیا, کیش بھی دیا, تو راؤنڈ اباؤٹ کتنی فکر بن جاتی ہے گیس کیا جائے.
2: میرا خیال سب سے پہلے تو یہ کہ 250 کے قریب گیس تھے, تو اس میں آپ حساب لگا لیں, 200 کراؤن کے جو ٹکٹ ہے اس کے حساب سے آپ لگا لیں کتنا بنا, 40,000 ایک بن گیا, اور میرا خیال ہے 50 آپ اس کو ملٹی پلائی کر لیں 200 سے, تو یہ تقریباً یہ کوئی 50,000 کے قریب یہ تو ٹکٹ کا میرا خیال ہے بکے ہیں. لیکن میں آپ کو ایک بتا رہا ہوں کہ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ اصل فگر جو ہیں وہ ابھی ہمیں میٹنگ ہماری نہیں ہوئی ہے, میٹنگ ہوئی گی تو اس میں پتہ لگے گا. اور جیسے میں نے آپ سے کہا کہ یہ ایوب بھائی کے پاس ایگزیکٹ فگر ہوں گے تو آپ ان سے بھی پتہ کر سکتے ہیں, ان کو بھی آپ آن ایئر لے لیں, وہ آپ کو پورا تفصیل بتائیں گے کیونکہ ہماری پوری ٹیم اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. تو کوئی ایسا وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے کہ کوئی ایسا کوئی ڈسکرپنسی بیچ میں آ جائے.
1: تو کیا یہ اکاؤنٹ یہیں ہیں, یہیں بینک میں چلے جاتے ہیں؟
2: یہ اپنا جو ہے یہ آپ ایوب بھائی سے پتا کریں. میں ایکچولی آپ سے اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ میں فائنینس گائے نہیں ہوں, میرا کام ہے پروگرام کو ہوسٹ کرنا, فنڈ ریزنگ کرنا, لیکن میرا کام یہ نہیں ہے کہ پیسوں کو مینیج میں نہیں کرتا ہوں. وہ ہمارے چونکہ اتنے لوگوں کو میں نے آپ نے نام لیا ہے, ان میں سے ایک دو لوگ جو ہیں وہ ریلیٹڈ ہیں ایوب بھائی کے ساتھ مل کے جو کام کرتے ہیں, اور وہ ان کے پاس پورے فگرز ہوں گے. میں اگر کوئی فگر دے دوں تو وہ یا کوئی ایسا بیان دے دوں جو کہ مجھے نہیں پتا تو وہ میرا خیال ہے زیادتی ہوگی.
1: تو چلیں رضوان بھائی, چونکہ اسٹیٹ سیکرٹری کے پاس بہت انفارمیشن ہوتی ہے تو میں اس لیے زیادہ سوال آپ پہ کر رہا ہوں.
2: اچھا, ہاں بس اس میں یہ ہے کہ اسٹیٹ سیکرٹری میرے علاوہ راجہ بابر صاحب بھی تھے, اور ظاہر ہے ہم نے بہت سے پروگرام اکٹھے کیے,
1: حالانکہ وہ بھی حساب کتاب کے بڑے تگڑے ہیں.
2: ہاں جو پھر ان سے تو آپ, آئی تھنک ہی از دا بیسٹ مین اور ایوب بھائی ٹو آسک دیز کوسچنز. میں بڑا ایک فری لانس کے طور پہ کام کرتا ہوں, اور صرف شوکت خانہ میں نہیں اور بھی
1: چلے آتے ہیں. آپ کرتے ہیں اکثر, آپ جو ہیں وہ ناراض بھی ہو جاتے ہیں, چلے بھی جاتے ہیں, چھوڑ بھی دیتے ہیں, پھر یہ آپ کو ہائر کر لیتے ہیں.
2: ہاں جی ہاں جی, یہ ایک میں نے ایک دو بھائیوں نے اور بھی یہ پوچھا ہے, میں بالکل ناراض نہیں ہوا. جس طرح اب میں نے جتنا ان لوگوں کے بارے میں تفصیل سے بتایا اس سے آپ کو پتہ لگا ہوگا کہ میں ناراض بالکل ان سے نہیں ہوں, کیونکہ یہ ہمیشہ ہی بڑی محبت, ان کی محبت ہے کہ میں ان کے ساتھ کام کر رہا ہوں. میں صاف کہوں گا تو پچھلی دفعہ میں نے بتایا تھا کہ یہ میرا لاسٹ, جب حمزہ عباسی صاحب آئے تھے میں نے کہا تھا کہ یہ میرا آخری پروگرام ہے, اس کے بعد میں ہوسٹ نہیں کروں گا. لیکن اس دفعہ دوبارہ ان کی محبت ہے کہ انہوں نے کہا کہ آپ پروگرام ہوسٹ کریں, میں نے پروگرام ہوسٹ بھی کیا, سو آپ کا کام ہے. لیکن اصل جو وجہ ہے چھوڑنے کی وہ دو ہیں. اگر آپ کو تھوڑا ٹائم ہو تو میں آپ کو بہت تفصیل سے بتاتا ہوں کہ یہ وجوہات ہیں وہ کیا ہیں. نمبر ایک, میرا اس وقت جاب چینج ہوا ہے فروری میں, اور میں اب بہت زیادہ مصروف ہو گیا ہوں. مطلب اتنا ٹریول ہے میری جاب میں کہ سم ٹائمز مجھے خود یہ احساس ہوتا ہے کہ میں شاید اپنے آپ کو زیادہ, آئی ایم پوٹنگ مور ایفرٹس آن مائی باڈی. یہ ایک میرا مین جو ہے کہ میرے پاس ٹائم بالکل نہیں ہے. میں اگر پروگرام ہوسٹ کرتا ہوں تو بڑے دل سے کرتا ہوں, میں بڑی تیاری کر کے اس کی آتا ہوں تاکہ لوگوں کو میں محسوس کر سکوں. لوگ ظاہر ہے اگر جو آ رہا ہے 200 کراؤن خرچ کر کے, اس کی ایکسپیکٹیشن یہی ہے کہ اس کو اچھا سننے کے لیے ملے, اس کو اچھا. بیچ میں اس لیے میں ایک دو لطیفے بھی وغیرہ سناتا ہوں, تو وہ اسی وجہ میں پروگرام تیار کر کے آتا ہوں. وہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے اب بالکل بھی. اب جس دن میرا پروگرام تھا میں اس دن اوڈینس سے ڈائریکٹ آیا ہوں, اور بڑا مطلب اوور اسپیڈنگ کر کے آیا ہوں کہ میں نے پروگرام میں پہنچنا ہے, گھر آ کے تیار ہونا تھا, جانا تھا. یہ ایک میرا بہت بڑا جو ہے وہ مسئلہ. ابھی آپ کا جو فون آیا اس سے پہلے بھی میں ابھی دفتر کا کام ہی کر رہا تھا گھر بیٹھے ہوئے. ظاہر ہے جاب از یور بریڈ اینڈ بٹر, ہم کوئی فیکٹریاں ہماری تو ہماری چل نہیں رہی ہیں.
1: مجھے پتا ہے آپ مصروف ہوتے ہیں, میں نے آپ کو فون کیا, میں نے آپ سے ٹائم لیا. ظاہر ہے جس کے پاس ٹائم مصروف ہوتا ہے, قیمتی ٹائم ہے, آپ نے اپنے بچوں کو بھی ٹائم دینا ہے, لیکن اس کے باوجود آپ نے ٹائم دیا, آپ کا بہت مہربانی آپ کی.
2: سر نہیں, یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر ملتا ہے. انسانوں نے کیا دینا ہے, انسانوں کی اوقات کیا ہے, میری کیا اوقات ہے کہ میں کسی کو اجر دے دوں, یا کسی کی کیا اوقات ہے. یہ اجر من جانب اللہ ملتا ہے, یا ان لوگوں کی شاید دعائیں مجھے لگتی ہیں کہ میں اپنا زندگی میں ترقی کر رہا ہوں, میں فلورش کر رہا ہوں, یہ شاید ان بے بس لوگوں کی دعائیں ہیں جو ہماری طرف دیکھ رہے ہیں. اچھا, اب ایک وجہ تو میری مصروفیت, بے انتہا مصروفیت ہے. دوسری وجہ جو مین ہے وہ یہ ہے کہ میں ہر دفعہ اپنا پروگرام جو ہوسٹ کرتا ہوں اس میں ہمیشہ یہ پیغام دیتا ہوں کہ اب نئے چہروں کی ضرورت ہے. इसलिए कि हम जब ये कहते हैं कि हमने इस मिशन को लेके चलना है और ये चलता रहेगा। देखिए राजा साहब, आज आप यहाँ मौजूद हैं,
1: आप जरा नए चेहरे बताएं, क्या ये कंप्यूटर पे बनाएं या किस तरह बनना नए चेहरे लाए?
2: हाँ जी, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ सर। सवाल तो आप बड़ा मजेदार करते हैं, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। देखिए, आज मैं और आप यहाँ मौजूद हैं, अल्लाह आपको जिंदगी दे, अल्लाह ताला सेहत याबी दे, सेहतमंद रखे, लेकिन आखिर कितने साल? मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। जब मैं 1998 में यहाँ पे आया था, तो मेरे जो इन लॉज हैं, वो उन सारों ने, मेरे ससुर साहब ने मिलके, वो जो लाहौर क्लब या लाहौर वेलफेयर आप जानते हैं, वो जो क्लब, वो मेरी दास्तान रही अन कहीं ना नसाब में ना किताब में, वो जो थी उसके जेरे इंतजाम एक प्रोग्राम किया ईद मिलन पार्टी का। ये बात है 1998 दिसंबर की, ईद मिलन पार्टी का बंदोबस्त किया, या मेरे ख्याल मार्च अप्रैल की होगी 99 की, लेकिन बहुत साल हो गए हैं। अब उस वक्त जितने वहां मेहमान बैठे हुए थे, जितने लोग बैठे हुए थे, जाहिर है वो उसी एक एज के थे। अब वो जितने भी हैं, उनमें से काफी जो हैं वो तो मौजूद नहीं है हमारे में, लेकिन जो हैं अब वो एज उनकी इतनी ज्यादा हो चुकी है कि वो अपने घरों तक ही रहते हैं, वो ऐसे इवेंट्स में नहीं आते। तो अगर आप इससे इतना ही साल, अगर 20-25 साल आगे लगाएं, तो क्या हम लोगों में इतनी हिम्मत होगी? अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे, लेकिन अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो क्या आप में इतनी हिम्मत होगी कि आप ये प्रोग्राम कर रहे होंगे, या आप ये जो सामाजिक काम करते हैं वो कर रहे होंगे, या मैं कर रहा हूँगा? तो देखें, देयर इज ऑलवेज अ चेंज एंड नथिंग इज परमानेंट। मैंने इस बात पे जोर दिया है कि मैं बारिश का पहला कतरा बनता हूँ, मैं स्टेज से नीचे आ जाता हूँ, आप मेरी जगह किसी यंग को ढूंढें। यंग मैं इसलिए यंग कह रहा हूँ जो कि फटाफट, जो एजुकेटेड हो और डेनिश अच्छी बोलता हो।
1: जो रिजवान भाई, आप यंग की बात करते हैं, तो यंग के हवाले जब सारी तंजीमात हवाले की जाती हैं, जिस तरह ये एम्बेसी के सामने डेमोंस्ट्रेशन होती है, तो देख लिया यंग जो डेमोंस्ट्रेशन करते हैं वो कितने लोग इकट्ठे करते हैं। पिछली दफ़ा अयूब साहब ने अपने हाथ में ये काम लिया, तो उसकी तादाद भी देख लें। तो इसलिए हर चीज़ को यंग से साथ और उम्र सीधा के साथ नहीं तोलना चाहिए।
2: जी, ऐसी बात नहीं है, मेरा ये मतलब है कि आज अगर हमें यंगस्टर्स ज्वाइन करते हैं तो वो हमसे सीखेंगे, हम मौजूद हैं, ठीक है, ये ट्रेनिंग होती है बकायदा, और उसके बाद वो इस प्रोग्राम को अकेले हैंडल करेंगे। उसके दो फायदे होंगे, एक तो ये कि हम लोग जो आज यहाँ हैं वो कल नहीं होंगे, लेकिन शौकत खाना में तो चलते रहना है ना, अल्लाह ताला इसको आबाद रखे, कायम रखे। तो ये सफर कैसे चलता रहेगा? हम जब मतलब रिटायर हो जाएंगे तो फिर कौन शौकत खाना को चलाएगा? जब तक कि हमने ही आगे इसको ट्रांजिशन कहते हैं, जब तक हमने इसको आगे ट्रांसफर ना किया नई जनरेशन में। मेरी बात नहीं समझने की कोशिश की,
1: लेकिन मुझे खतरा महसूस हो रहा है कि आपने छोड़ दिया, आप जा रहे यंग के हवाले करने के लिए, मेरा आपका आखिरी प्रोग्राम है।
2: मेरा तो ये कम से कम आखिरी प्रोग्राम था, मैंने बता भी दिया है वहां पे, अयूब भाई को भी बता दिया है कि अब मेरा एक तो दफ्तर का टाइम, एक मेन वजह ये है कि मेरा मसरूफियात बहुत ज्यादा है, और दूसरी बात यह है कि मैंने तो पिछले साल अब्बासी साहब के प्रोग्राम में कह दिया था कि अब मेरा ये आखिरी प्रोग्राम है, लेकिन इसके बावजूद मुझे ये प्रोग्राम करना पड़ा, और मैंने इनसे इस बार कहा कि हाँ ठीक है ये है, लेकिन इस दफा आखिरी है, आप किसी नए होस्ट को लेके आए, रिप्लेसमेंट लेके आए, मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, अगर आप समझते हैं कि आपको मेरी हेल्प की जरूरत है मैं जरूर करूंगा, लेकिन ये है कि नाउ
1: तो राजा बाबर जो है उनसे अच्छा तो बहुत अच्छा बोलते हैं, वो बहुत अच्छा जो है वो शेर व शायरी भी करते हैं।
2: हाँ जी, मेरी राजा बाबर साहब के साथ मैंने,
1: वो भी यंग है,
2: वो तो बिल्कुल यंग है ना जी, तो इसलिए उनका तो मैंने इसलिए जिक्र इसलिए नहीं किया कि वो ही आपको बताएंगे कि क्या उनकी फीलिंग है, क्योंकि वो भी

0: को रिसीव किया और माशाल्लाह डॉक्टर साहब को रिसीव किया। डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी हमें जो प्रेजेंटेशन दी और पूरे लोगों के लिए लंबी प्रेजेंटेशन थी। नॉर्मली लोग बोर हो जाते हैं लेकिन हर एक बड़े ही उसको गौर से सुन रहा था और इट वॉज एक्चुअली अ वेरी अट्रैक्टिव प्रेजेंटेशन। आई वुड अप्रिशिएट क्योंकि इससे जानकारी हमें ये मिली है कि कितना इम्पोर्टेंट है ये मिशन। तो ये डॉक्टर साहब ने बताया, काफी लंबी प्रेजेंटेशन थी लेकिन बहुत ही ज्यादा शेर हासिल गुफ्तगू रही, बड़ा उन्होंने बताया। उसके बाद फिर हमने हरीम साहबा को स्टेज पे बुलाया और फिर बकायदा प्रोग्राम का आगाज हुआ।
1: ये हरीम साहिबा
0: फंडरेजिंग
1: कौन थी?
0: ये एक जनाब टीवी आर्टिस्ट हैं, ड्रामा में काम करती हैं और कुछ मेरे ख्याल एक दो फिल्मों में भी काम कर रही हैं। उनकी फिल्में भी शायद एक दो आने वाली
1: उन्होंने
0: हैं
1: कोई
0: लेकिन
1: ड्रामा किया या कोई नगमे सुनाए या क्या किया?
0: नहीं जी बिल्कुल, उन्होंने बड़े ही अच्छे तरीके से फंड रेजिंग को ही जो है वो हाईलाइट किया और इसकी इम्पोर्टेंस बताई। और जो खवातीन आ रही थी, हमारी बहनें जो ऊपर फंड देने के लिए आ रही थी, डोनेशन देने के लिए आ रही थी, वो उससे हर एक से बिल्कुल उसी तरह मिली जिस तरह एक अगर 1,000 दे रहा है और एक अगर जो है वो 100 करोड़ दे रहा है, वो उसी तरह ही अच्छे तरीके से वो मिली हैं, बहुत मोहब्बत से मिली हैं। और मैं फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम कह लें, मैं इम्प्रेस हुआ हूँ एक तो अब्बासी साहब से और एक इनसे। तो मुझे बड़ी खुशी हुई है देख के कि जो यंग जनरेशन आ रही है वो पढ़े लिखे घरानों से आ रही है और एजुकेटेड है और मैं बहुत
1: रिजवान
0: तमीजदार।
1: भाई, सबसे ज्यादा किसने दिया? जब उन्होंने मांगे डोनेशन के लिए तो सबसे ज्यादा किसने दिए?
0: सबसे ज्यादा किसने दिए? बड़ा अच्छा सवाल किया है। कुछ लोग अपना नाम नहीं बताते हैं लेकिन मैंने जो देखा है चंद लोगों ने 3,000 से 5,000 दिए हैं लेकिन उनकी तादाद कुछ इतनी ज्यादा नहीं थी। लेकिन जिन्होंने कुछ लोग ऐसे हैं ना जो कह देते हैं जी कि हमारा नाम ना बीच में आए,
1: तो
0: पैसे
1: कुछ
0: छूट
1: लोग
0: जाते हैं
1: लिखा
0: बॉक्स
1: भी
0: में,
1: देते हैं।
0: कुछ लोग लिखा भी देते हैं। अब वो बॉक्स और वो जो लिस्ट है वो जैसे मैंने बताया कि अभी हमारा इस सिलसिले में कोई मीटिंग नहीं हुई है लेकिन बॉक्स में इस दफा सारे जो कैश था वो डाला गया है, ओपनली ना ट्रांसपेरेंट बॉक्स था उसमें पैसे डाले गए हैं ताकि सबको पता लगे कि फंड्स जो है वो इस बॉक्स
1: अक्सर
0: में
1: हुआ
0: पहुंचे।
1: रिजवान भाई, लोग लिखा देते हैं, देते नहीं हैं, वो लिस्ट जरा हमें भेज दे ताकि हम पढ़ते रहें, यादानी कराते रहें।
0: इस तरह के लोग भी मौजूद हैं लेकिन जाहिर है वो नाम लेना तो ठीक बात नहीं है। मैं समझ रहा हूँ आपका इशारा किधर है लेकिन अल्लाह ताला जज़ा दे और उनको नेकी की हिदायत करे तो वो भी आके तो अपना फंड दे देंगे। नाम मुझे नहीं पता अभी लेकिन मेरा ख्याल है ऐसा बहुत ही कम होता है। ज्यादातर जो लोग हैं जो वादा करते हैं वो मेरा ख्याल है दे देते हैं पैसे। तो
1: अपना रिजवान भाई, ये अच्छी खबर नहीं है कि आप जो है वो जगह छोड़ रहे हैं, रिटायर्ड हो रहे हैं। नहीं, आप जैसे लोगों को रहना चाहिए। देखिए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सारी चीज़ें जो है ना, वहाँ जाकर किसी गमी के प्रोग्राम में तो बंदा नहीं शामिल होता, इंजॉय करने के लिए लोग जाते हैं।
0: जी आप ये आपकी मोहब्बत है, बहुत शुक्रिया। लेकिन ये जो इस तरह का जो प्रोग्राम है ना ये इतना लंबा प्रोग्राम नहीं होता। इसके लिए जहां तक मैं शुरू से इस चीज का कायल हूँ कि एक ही होस्ट काफी होता है। तो अब जिस तरह राजा बाबर साहब जैसे मैंने बताया उनके साथ मैंने बहुत प्रोग्राम किए हैं तो वो मेरे ख्याल काफी हैं इस पूरे इवेंट के लिए। और अगर हम किसी यंग को ट्रेन करना चाहते हैं, मेरे पास अगर टाइम होता तो मैं कभी भी ना छोड़ता। मैं इसको इससे मोहब्बत है मुझे मेरे अपने काम से, जितना भी छोटा मोटा मुझे आता है लेकिन मुझे
1: तो जिस
0: काम
1: तरह
0: की
1: ये
0: वजह
1: देखे ना,
0: से
1: ये फंड रेजिंग के लिए मेहमान आते हैं, आर्टिस्ट आते हैं जो वहाँ के एक सिस्टम से हायर किए जाते हैं, तो इसी तरह आप परमानेंट यहाँ को बंदा भी हायर कर लें।
0: परमानेंट ये है ना जी कि नथिंग इज परमानेंट। तो उसमें जो यंग आएगा ना बंदा, मैं दोबारा इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हमने इस मिशन को लेके चलते रहना है, हमारे बाद भी इसको चलते रहना चाहिए। और देर इज ओनली वन वे ऑफ डूइंग दिस कि हमारी जो पूरी टीम है वो एक छोटी टीम को अपने साथ यंगस्टर्स को लेके उनको ट्रेन करना शुरू करें। देखिए बहुत चीजें हैं, सिर्फ होस्टिंग तो एक बहुत इसका छोटा सा हिस्सा है। जो मैनेजमेंट है जो इसमें ज्यादातर इसको जिसको अयूब भाई अभी चला रहे हैं, तो मैं तो यही कहूंगा इस प्रोग्राम में भी के तौर से भी मैं यही कहूंगा कि अब कोई एक नया जो है जिसको अच्छी यहाँ का कल्चर पता है, डेनिश लैंग्वेज में उसका अबूर है, उसको अयूब भाई के साथ समाबाइत करना चाहिए, उनके साथ मिलके काम करना चाहिए ताकि उसको पता लगे कि क्या प्रोस एंड कॉन्स हैं, किन किन चीजों की तरफ ध्यान देना है, वहां से स्टार कैसे बुलाना है आगे आने वाले। आपको क्या पता है कि शायद आगे आने वाले टाइम में हम पाकिस्तान से कोई स्टार बुलाएं ही ना, 25 साल बाद यहीं का कोई लोकल स्टार आया हो, कोई इंग्लिश स्टार आया हो और उसके तौर से जो है जो हमारी अगली जनरेशन है वो ये प्रोग्राम अरेंज करे।

0: शौकत खानम को मैंने अपने बच्चों को ये बताया है और ये कहा है, वो भी हर प्रोग्राम में डोनेट करते हैं। मैंने उनको ये कहा कि बेटा मैं रहूं या ना रहूं, डेफिनेटली एक दिन आएगा जब मैं नहीं हूंगा, लेकिन शौकत खानम का ध्यान रखना और बेटा इसके लिए जो भी है वो काम करते रहना जिस तरह भी हो। एक बात मैं आपको मजीद बताना चाहता हूँ, ये जो फंड रेजिंग है ये हम क्यों करते हैं जबकि ऑनलाइन खुली हुई है। मेरे ख्याल आप भी, आपके जहन भी ये चीज होगी कि
1: बिल्कुल,
0: ऑनलाइन
1: लाइनें
0: ओपन।
1: खुली हुई हैं, अकाउंट्स बने हुए हैं।
0: जी बिल्कुल, और समवन कैन डायरेक्टली डोनेट टू शौकत खानम पाकिस्तान। तो अपरेंटली लगता तो ये है कि इस तरह के प्रोग्राम्स की कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली डोनेट कर सकते हैं। लेकिन वजह, अब मैं आपको इसकी मेन वजह बताता हूँ कि हम ये प्रोग्राम क्यों अरेंज करते हैं। देखें, ये जो ऑनलाइन है इस पे लोग 100 भेज देंगे, 200 भेज देंगे, 500 भेज देंगे, कुछ भी, लेकिन फंड रेजिंग में कलेक्टिवली सारे एक ही तारीख में पैसे जो हैं वो डोनेट करते हैं। और हम लोग जो के स्टेज पे होते हैं या हमारे जो स्टार आए होते हैं, मेनली उनकी बात कर रहा हूँ, तो वो अपना लोगों को जब इसकी अफादियत बताएंगे। इंसानी दिमाग इस तरह राजा साहब काम करता है कि एक वक्त में आपका दिमाग एक फैसला करता है और अगले ही वक्त में वो उस फैसले को चेंज करके दूसरा फैसला कर लेता है कुछ खास चीजों में। फॉर एग्जाम्पल, मुझे बताया जा रहा है कि जी ये बड़ा इंपॉर्टेंट काम है, आप इसको इसमें 1,000 दे दें। मैं कहूंगा यार मेरे हालात तो ठीक नहीं है लेकिन मैं 1,000 दे देता हूँ। लेकिन राजा साहब जब वो मोमेंट खत्म होता है ना, तो उस वक्त मेरा माइंड भी चेंज हो गया होता है। ये इंसानी बिहेवियर की मैं बात कर रहा हूँ और ये आप कहीं भी नेट पे चेक कर लें, इंसानी माइंड काम ही इस तरह करता है। तो फंड रेजिंग के प्रोग्राम में ये होता है कि जब हमारे जो गेस्ट हैं जो और या जो शौकत खानम के रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो जब आके इसकी अफादियत बताते हैं, वो जब आके इसके फवायद बताते हैं और ये बताते हैं कि इसकी कितनी जरूरत है, तो वो लोग मेरे जैसे लोग जो के 100 करोड़ या 200 करोड़ महीने का, या कभी कभार 100, 150, 200 इतना महीने का हम ऑनलाइन भेजते हैं, उनमें उनको भी एक किस्म की एनर्जी मिलती है और वो बढ़ के डोनेट करते हैं। तो इसके ऊपर बकायदा एक, ये खान साहब जब माशाल्लाह नहीं थे, जेल में बाहर थे, तो ये बकायदा इसके ऊपर एक इंटेंसिव एक डिबेट हुई थी, तो उसे ये पता लगा था कि फंड रेजिंग इवेंट्स में लोग ज्यादा इंटेंसिटी से
1: अच्छा,
0: फंड
1: जिस
0: रेजिंग
1: तरह
0: करते
1: आप देखें ना, मस्जिद में जाते हैं तो हालांकि चंदा पहले इकट्ठा कर लेना चाहिए, कपड़ा फैला लेना चाहिए, लेकिन हमेशा जब जूं ही नमाज ख़त्म होती है, ला इलाहा पढ़ते हैं तो साथ ही कपड़ा शुरू हो जाता है। तो इसका मतलब क्राउड जब मौजूद होता है।
0: इसका। देखें, आपने बिल्कुल वही बात कही, आपने माशाल्लाह इसका जवाब दिया मुझे कि जब आपके, मतलब सिंपल उर्दू में, जब आपके जज्बात को उभारा जाता है ना जनाब, जब आपको ये बताया जाता है, इसकी हिफाजत बताई जाती है। कुछ लोग, कुछ काम मैं और राजा बाबर भाई मिलके करते थे, मतलब ये कि अब तो मैं नहीं करूंगा, लेकिन ये कि हम लोगों के
1: लेकिन
0: बाबर
1: बाबर
0: को,
1: साहब से जब भी रابطہ कायम किया जाए तो वो कहते हैं मैं ख़त्म पे जा रहा हूँ, बस अभी ख़त्म पे आया हूँ, अभी फातिहा पे आया हूँ, तो अभी मैं शिकार पे जा रहा हूँ, अभी मैं शिकार कर रहा हूँ, अभी मैं जनाब अभी, ये तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इसके लिए तो टाइम चाहिए।
0: जी खत्म पे तो जाहिर है वो दुआए खैर करने के लिए जाते हैं, तो वो तो नेक आदमी है, तो जाहिर है उनका, मैं भी खुद भी उनका बहुत मद्दा हूँ। और जिस तरह मैं दोबारा ये बात कहूंगा ऑन एयर के मैंने और राजा भाई ने शौकत खान
1: तो
0: को
1: आप
0: करीब
1: ज़रा
0: चार से
1: मेरी
0: पांच
1: अर्जी आगे
0: प्रोग्राम
1: भेज दीजिएगा कि अयूब साहब को और अपना राजा बाबर साहब को कल इतवार के प्रोग्राम में हम दावत देते हैं, अभी ज़रा मसरूफियात अपनी कैंसिल कर दें बाकी।
0: अच्छा जी, मैं बिल्कुल, बल्कि आपका तो मेरे से ज्यादा उससे बात होती है भाई से, तो मैं आपको ये बता दूं कि मैंने और उन्होंने कोई 4-5 प्रोग्राम मिलके किए हैं इकट्ठे, और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है उनके पास। देखिए यहाँ पे एक किल्लत ये भी है कि उर्दू का लोग कम जानते हैं, उनके पास
1: अपना रिजवान भाई
0: इतने
1: बड़ा
0: और
1: मुश्किल है, दो शेर स्टेज पर।
0: हाँ जी हाँ जी हाँ जी, और वो उनको याद होते हैं और मतलब बोलते भी मौके पे हैं, तो ये बड़ी एक एक एक यूनिक किस्म की क्वालिटी है और मुझे मजा आया उनके साथ काम
1: नहीं, लेकिन
0: करके।
1: आप जुबानी बोलते हैं, वो पढ़कर बोलते हैं।
0: पढ़ के इसलिए बोलते हैं कि कहीं कोई, क्योंकि उर्दू जुबान जाहिर है बड़ी गहरी है, लेकिन मैं जब मेरी उनसे वैसे अक्सर बात होती है
1: हम
0: तो
1: तो हजारों गलतियां
0: उनसे,
1: करते रहते हैं उर्दू में, कौन
0: हाँ
1: सी
0: हाँ
1: हमारी, जो हम लखनऊ के पैदाशुदा हैं।
0: वही तो मैं बात कर रहा हूँ कि ऐसे लोगों की, बहरहाल मैं तो तारीफ करता हूँ जो आगे आते हैं, स्टेज पे आते हैं और आके फंड रेजिंग के लिए किसी के आगे हाथ फैलाना राजा साहब कोई आसान काम नहीं है, बेशक कि आप किसी,
1: दुनिया
0: लेकिन
1: का
0: जब
1: सबसे मुश्किल काम है,
0: जी
1: लेकिन आप बहुत आसान हैं।
0: अच्छा जी वो कैसे,
1: वो आप देखें, किसी चौक में खड़े हो जाएं, किसी जगह खड़े हो, किसी गाड़ी में देखें, लोग आपके शीशों पर ठक ठक करते हैं।
0: हाँ जी, लेकिन वो फंड रेजिंग ना कर रहे होते, वो तो अपने लिए कर रहे होते हैं।
1: अच्छा ये फंड रेजिंग नहीं,
0: किसी के लिए हाथ फैलाना, किसी के लिए हाथ फैलाना वो तो अपने लिए करते हैं ना, किसी के लिए हाथ फैलाना वो भी हम जैसे लोगों के, जो कि हम तो खुदा ना खासा हम तो अपने अपना काम करते हैं।
1: देखिए रिजवान भाई, ये एक नोबल काज है, इस काज में हिस्सा लेना चाहिए, चाहे सामने दें, चाहे छुप कर दें, चाहे बैंक की शक्ल में दें, चाहे अपने नाम के लिए दें, ये एक नोबल काज है।
0: बिल्कुल। और मैं अपनी टीम के बारे में एक बात और आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे, जो शायद आप ना जानते हो, ये जो टीम है पूरी जिनका मैंने नाम लिया है समेत जो दो हमारी खवातीन वर्कर हैं, हम वैसे भी इसका प्रचार करते रहते हैं और हम डायरेक्ट
1: तो खवातीन वर्कर का नाम भी लें ताकि तजस्सुस पैदा हो खवातीन में।
0: जी खवातीन का नाम आपको पता है हमारे यहाँ के जमाने में शनाख्ती कार्ड के ऊपर लिखा होता था कि तस्वीर नहीं देना चाहते तो अंगूठा लगा दें, बड़ी पुरानी बात है। तो हम तो जनाब उस टाइम से हैं, इसलिए मैं खवातीन का नाम।
1: अच्छा, 2026 में भी यही कुछ है
0: जी? तो मेरी अभी उनसे इजाजत नहीं, ये नहीं बात कि मेरी उनसे बात नहीं हुई बारे में कि मुझे आपका मैसेज आया तो मैंने प्रोग्राम अटेंड किया है, तो वरना मैं जरूर नाम लेता, मुझे इसमें कोई नहीं था। लेकिन खवातीन का इससे जाहिर है पहले पूछ लेना चाहिए कि उनका नाम लेना है कि नहीं लेना। लेकिन ये कि वो भी हमारी तरह ही बहुत मेहनत से काम कर रही है। आप वो बीच में एक बात मैं आपको बता दूं, वो बीच में
1: लेकिन आपने आज एक नाम नहीं लिया, अगर मुझे इजाजत दें तो मैं ये सवाल कर लूं कि साबका सिटी काउंसिलर लुबना इलाही साहबा का आप नाम नहीं ले रहे?
0: लुबना इलाही साहबा शायद किसी वजह से मसरूफ हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन नहीं किया या हमारे साथ वो आई नहीं है। और जैसे मैंने बताया कि मैं तो प्रोग्राम में भी, इस प्रोग्राम में भी मैं बगैर तैयारी के आया था क्योंकि मैं अपने काम में बहुत ज्यादा मसरूफ, तो इस वजह से मुझे ये मुहर्रकात नहीं पता इसके पीछे क्या चल रहा है, वो बिजी हैं या कहीं गई हुई हैं,
1: मेरी निकाल दिया सिस्टम से।
0: नहीं ऐसा देखें, हर एक एवरीवन इज वेलकम। मैं आपको इसका सबूत ये देता हूं कि आप किसी एक्स वाई जेड को भेज दें रैंडमली और वो ये ना बताया कि मुझे राजा गफूर ने भेजा है, वो उसको आप अयूब भाई की तरफ भेज दें, हमारी तरफ भेज दें कि जी मैं शौकत खानम के लिए काम करना चाहता हूँ, वो आपको आके बताएगा कि किसने उसको रोका है। किसी ने भी नहीं रोका, हर बंदा वेलकम है। अगर किसी वजह से तो मेरे से लुबनाबाजी की बात नहीं हुई है इस बारे में, लेकिन जो बातें मैं सुनता हूँ वो ये है कि इस पूरे प्रोग्राम में मैंने हार्डली एक मीटिंग अटेंड की है और उसमें कोई किसी के खिलाफ कोई बात नहीं हुई, किसी का जिक्र नहीं है। मैं ये पूरी जिम्मेदारी से जिस मीटिंग को मैंने अटेंड किया है वो मैं आपको बता रहा हूँ।
1: आपको शायद अटेंड नहीं किया, आपने होस्ट किया है।
0: मैं मीटिंग्स जो हुई थी ना उस सिलसिले में जो हुई थी वो एक, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। होस्टिंग में तो जाहिर है मैं पूरे प्रोग्राम में मौजूद था, तो अच्छा फीडबैक भी मुझे मिला है और अल्लाह ताला करे कि
1: रिजवान भाई क्लोज करते हैं। मैंने आपसे आधा घंटा लिया था, थोड़ा टाइम ज्यादा हो गया है, माफ़। तो रिजवान भाई इसको सम अप करें कि इसमें क्या हासिल हुआ, क्या आइंदा करना चाहिए।
0: हाँ जी, मैं बिल्कुल 2 मिनट लूंगा। वो ये है कि सम अप इस तरह मैं इसको करता हूँ कि ये जो मिशन है शौकत खानम का, ये चलता रहना चाहिए, ये क्यामत तक चलता रहना चाहिए। अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामत रखे, अल्लाह ताला जिसने ये हस्पताल बनाया है उसको लंबी जिंदगी दे और इसको जो है वो महफूज रखे हर तरह की आफत से, जो कि फिलहाल नजर नहीं आ रहा। और अल्लाह ताला इस हस्पताल को हमेशा कायम दायम रखे। जो लोग बीमार होते हैं उनको पता है कि शौकत खानम उनके लिए क्या है। हम तो सिर्फ बैठ के बातें कर रहे हैं ना, हम तो लोगों के मतलब इस तरह उनको मैसेज देते हैं, लेकिन जो बीमार हुआ है उसको उससे पूछें ना, जो बीमार होता है ना वो, ये मेरी बात पूरे जो आपके सामाइन सुन रहे हैं वो सुन लें, जो बीमार होता है इस तरह का मर्ज जिसको लगता है ना, फिर वो पीटीआई का कारकुन रहता है ना वो मुस्लिम लीग का कारकुन रहता है, उसको सिर्फ और सिर्फ अपनी जिंदगी बचाने की जरूरत होती है। एंड शौकत खानम इज प्रोवाइडिंग इट, एंड आई स्ट्रांगली रिकमेंड दैट दिस जर्नी शुड बी एन एवर लास्टिंग जर्नी, ये कभी खत्म नहीं होनी चाहिए हम रहें या ना रहें। मैं आपके तौर से दोबारा ये दरख्वास्त करूंगा अपने यंग जनरेशन से कि वो आके हमें ज्वाइन करें, ताकि जब वो आके स्टेज को संभालेंगे और डैनिश और उर्दू और इंग्लिश के मिले जुले उसके अंदर वो होस्ट करेंगे, तो जो यंग जनरेशन है वो भी आना शुरू होगी। आज हम लोग मौजूद हैं, मैं देख रहा था राजा साहब प्रोग्राम में ज्यादातर तकरीबन 90% लोग वो थे जो मेरी और आपकी उम्र और या जरा से छोटे होंगे, 10-12 साल का फर्क लगा लें, वो लोग बैठे हुए थे जिनको उर्दू समझ आती है, जो उर्दू समझते हैं। लेकिन हाउ अबाउट आवर यंग जनरेशन, क्या उनमें से इतने हैं जो कि इतनी गहरी उर्दू को या इतने जो हम जिस तरह की होस्टिंग में अपने शेर व शायरी बोलते हैं, लतीफे बोलते हैं, उनको समझ आ सके? तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, मेरा स्ट्रांगली मैं ये कहूंगा, अयूब भाई भी माशाल्लाह शायद प्रोग्राम सुन रहे हों कि, और उनसे मेरी बात भी हुई है सिलसिले में, कि अयूब भाई हम अपने साथ यंग लोगों को ऐड करते हैं, बेशक उनको शुरू में बोरिंग लगे, उनको हम ऐड करते हैं ताकि वो ये सीखें और वो इस मिशन को लेके आगे चलें। हमारे पास ज्यादा साल नहीं है, ये जनरेशन चेंज होती है, ये ट्रांजिशन का पीरियड सारा वक्त चलता रहता है। आज आप बताएं कायदे आजम मोहम्मद अली जना मौजूद हैं, डॉक्टर कदीर खान मौजूद हैं, ये मुझे ये चलता रहता है, ये चेंज होगा। आज हम हैं, कल हम नहीं होंगे, लेकिन शौकत खान का मिशन नहीं रुकना चाहिए। यंग जनरेशन से मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज कम अक्रॉस, ज्वाइन अवर टीम, लर्न द थिंग्स एंड कीप दिस जर्नी मूव ऑन।
1: रिजवान भाई आपका बहुत शुक्रिया, हमने सारे सवाल आपसे किए, तीखे सवाल भी किए, लेकिन ये ऐसा नोबल काज है, इस काज के लिए सबको बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। और लेकर मैं हुकूमत वक्त से भी जो है वो अपील करूँगा कि डेनमार्क में भी आप देख लें कि यहाँ जब पेशेंट जाता है तो फुली 100% इलाज जो है वो पेशेंट का फ्री होता है। इसी तरह हुकूमतें भी इसी तरह के अस्पताल बनाएं, बाकी चीज़ों को लग्जरी चीज़ों को छोड़ दें, इसकी तरफ ज़्यादा तवज्जो देनी थी। सेहत है तो सब कुछ है। रिजवान भाई आपका बहुत शुक्रिया, पाकिस्तान जिंदाबाद।
2: पाकिस्तान जिंदाबाद, शुक्रिया सर, अस्सलाम वालेकुम।
3: ये रेडियो आपकी आवाज़ है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज़ सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

0: एफ एम 92.9 और केबल नेट 88.9 पर यह रेडियो आपकी आवाज है।
1: एफ एम 92.9 और केबल नेट 88.9 पर यह रेडियो आपकी आवाज है।
2: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें। ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुजूर अकरम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जब हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले गए तो बच्चियों ने दफ बजाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का इस्तकबाल किया। यूं तलअल बद्रु अलैना दफ के साथ पहली नात ठहरी। इसी मोहब्बत और अकीदत को मद्देनजर रखते हुए दफ के साथ नजराना अकीदत बहुजूर सरवरे कायनात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पेश खिदमत है।

0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: सब

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: बस सामान, जैसा कि आप सबको मालूम है कि आजकल डेनमार्क में मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ा इशू बना हुआ है। बहुत सारे लोगों ने अपने अपने ख्यालात का इजहार किया, हर एक का अपना स्टाइल है। मजर सामाइन, एक ऐसी शख्सियत जिन्हें आप अच्छी तरह जानते हैं, तो मजर सामाइन इस वक्त वो अपने ख्यालात का इजहार मौजूदा इशू पर करना चाहते हैं। आइए मजर सामाइन सुनते हैं कि याकूब जान में तरजई क्या कहते हैं।
2: अस्सलाम वालेकुम मजर सामाइन, मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने याद किया और रेडियो आपकी आवाज़ पे मेरे खैरियत और मेरी गैरहाजिरी का सबब पूछते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, मैंने भी आप लोगों को भूला नहीं। इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, इस वक्त जो दुनिया में और मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो फिज़ा बनाई है इन्होंने, ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को बदनाम करने के लिए कर रहे हैं। हालांकि देखा जाए मुसलमान एक पीसफुल मज़हब है, रवादारी का मज़हब है और मुसलमानों ने हमेशा बहुत सारी बातों को दरगुजर किया है, लेकिन गैर मुस्लिम मज़हब हमेशा की तरह मुसलमानों को मजबूर कर रहा है कि तुम लोग जोश में आकर कोई ऐसा काम करो जिससे हम दुनिया में साबित कर सके कि मुसलमान तशद्दुद पसंद मज़हब है। हालांकि मामला इसके बिल्कुल बरअक्स है, मुसलमान बिल्कुल अमन पसंद है। अब इन सारी बातों को गौर से देखा जाए तो इब्तिदा इन्होंने की है, यूलैंड पोस्ट वालों ने कार्टून छाप करके मुसलमानों की दिल आज़ारी की है। उससे भी यहाँ के मुसलमानों ने बहुत तामुल से काम लिया, सिर्फ और सिर्फ पीसफुल तरीके से एहतजाज करते आए। अब इन्होंने देखा कि मुसलमान तो बहुत ही अमन पसंदी से काम ले रहे हैं, कोई तशद्दुद कोई तोड़फोड़ नहीं कर रहे हैं। फिर एक और गलती जो यहाँ के वजीर आज़म साहब ने की, एक और ज्यादती की कि 11 मुल्कों के एम्बेसडरों ने इनसे मिलने को कहा, लेकिन वजीर आज़म साहब ने इनसे मिलना गवारा नहीं किया। मुआज़रत तो बहुत दूर की बात है, मिलना भी नहीं चाहा। तो इस तरह की गलतियां इससे पहले भी वज़ीर आज़म ने मुसलमानों को के जज्बात को ठेस पहुंचाने के लिए, एक दफ़ा आप लोगों को याद है हॉलैंड के उस एक्ट्रेस को डेनमार्क बुलाकर बाकायदा टीवी पर एक घंटे तक उससे इंटरव्यू लेते रहे और इस्लाम के खिलाफ उससे जहर उगलते रहे। ये वो एक्ट्रेस थी जिसने हॉलैंड में फिल्म बनाई थी और जिस्म पर कुरानी आयतें लिखी थी, और उस फिल्म के डायरेक्टर को हॉलैंड में किसी ने कत्ल भी कर दिया था। तो उन्होंने यहाँ के मुसलमानों को ठेस पहुँचाने के लिए यहाँ के टीवी पर एक घंटा मुसलमानों के खिलाफ बोलती रही। फिर इस वजीर आज़म ने VIP प्रोटोकॉल दिया था उस एक्ट्रेस को और एक मेडल दिया था। तो ये सब क्या है, ये सब एक साजिश है। हम मुसलमानों को बहुत एहतियात करनी चाहिए, इनके साजिशों से होशियार रहना चाहिए, ऐसी कोई हरकत नहीं करनी चाहिए जिसको ये लोग जवाब बना कर एक इशू बना कर घर घर तलाशी शुरू कर दें, या जिसको भी अंदर करना चाहे या जिसको भी मुल्क से बदर करना चाहे, इस जवाब के तहत ये लोग हमारा जीवन हराम कर देंगे। हालांकि हम लोगों ने या हम मुसलमानों ने इस मुल्क को तरक्की की तरफ बढ़ाया है। अभी पता चला है कि मुस्लिम ममालिक में ये लोग बिलियन एंड बिलियन करोड़ों का माल बेचते हैं। ये मार्केट इनको कहां से मिल गई, ये तो हमारे ही मुसलमानों ने अपने अपने मुल्कों में इनकी ये चीजें इंट्रोड्यूस कराई और इनको घर बैठे बैठे इतनी बिजनेस मिल गई कि ये लोग पागल हो गए। और पिया कियास्को कहती है कि मुसलमानों को यहाँ से निकाल दिया जाए। चलो आपकी बात मान लेते हैं, इन सब मुसलमानों को अपने अपने मुल्कों में भेज देते हैं, और अगर इन मुसलमानों के मुल्कों ने इन चीज़ों का बायकॉट कर दिया था जो मिलियन एंड मिलियन के हिसाब से आप लोग उससे पैसे कमा रहे हैं, तो पिया कियास्को से पूछे क्या ये सब चीज़ें डेंस के फोल्क पार्टी वाले खरीदेंगे। पिया कियास्को को बता दे डेनमार्क ने जो तरक्की की है وہ ڈنس کے فال کے فارٹی سے نہیں کیے بلکہ انہی انواندا لوگوں کے توسط سے یہ ترقی ہوئی ہے. پھر بھی یہ لوگ انواندا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. جتنا ہم لوگ انٹیگریٹ ہونے کی کوشش کرتے ہیں یہ لوگ کوئی نہ کوئی ایشو کھڑا کر کے ہم کو پھر پیچھے دھکیل دیتے ہیں. ہمیں اس ملک میں رہتے ہوئے اپنے حق جمہوری طریقے سے حاصل کرنا چاہیے اور قانون کا احترام کرنا چاہیے اور ہمیشہ ان چالوں سے ہوشیار رہنا چاہیے. پاکستان پائندہ باد.
3: سامعین کرام, ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں.

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।